सत्संग जी बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वासी भगवती पाचे दसवें प्रथम भगवती सिमर कहे गुरु नानक लेते आए फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जुन हरगोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याटे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कारण उन्हें दया बैठा है सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह के पितरात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पार दारदा अंतर के घर से बोलो जी वाहेगुरु गरीबन वाह आप जी दे पांच प्यारे चार साहब जाते चाली मुक्ते हठिया चपिया तपिया जिन्हें नाम चपया वंड चकिया देव चलाई तेग वाहे देह कंजट किया तेना प्यारे सत्यार की कमाई दते अंतर की बोलो जी वाहेगुरु जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म है सी दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया चढ़े आर नजराए गए गुरदान सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा किसी देखे संस्था संघ निभाया तिना की कमाई दते अंदर की बोलो जी वाहेगुरु पंजा तख्तां सत गुरुद्वार दते अंदर की बोलो जी वाहेगुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे नाम चेता है जित आवण का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां गुरु खालसा साहब तरियात देख दे की फतेह बिरद की पहज पंथ की जी श्री साहब जी साहे खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहे गुरु सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि यहां चंडे बुंगे जुगड़ घाटन धर्म क्या जयकार बोलो जी वाहे गुरु सिखां दा मन नीवा मत उचे मत पद के राखे आप वाहे गुरु गुरु गरीब वाह पंथ सदा सहाई देो गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जो पंथ छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन की दात सेवा संभाल दता है अपने खालसा जी ने बख्शो हे नोटिया की ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ तार दोए कर जोड़ करो अरदास तू तो भावे तो आने रास हे गरीब नवाज जी आपके चरण कामना च अरदास ने आपने बख्शिश की है आपके चरणा पितर गुरबाणी सुखमनी साहब ने संपूर्ण पाठ दिता इस वे संध्या समय जान के आपके चरणा सोधदार रह रास साहब पाठ कितने कृपा करो हुईया भुला चुका नहीं माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सचखंड प्रमाण करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदा नुकसान कृपालता करो जी अगो तो शुद्ध पित्र बाणी चार बल बुद्धि बख्शिश करो इस खुशी आपकी बख्शिया दातों विचों पितर गुलाब शाह देगा तैयार कर हाथ दतार आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद सात संगत की रसना लायक हो जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी गीवन वाह कृपा करो आपकी बख्शिया दातों के नगर चुट सवारियां प्रबंध करनी गीवन वाह आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टैलिया सिंगा सिंगणिया तंदुरुस्ती बख्शो चाटिकला बख्शो सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना बख्शन की पालता करो गरीबन वाह कृपा करो जी इतने तार जियो अमृत वेद तो लैके दाते आई सब संगत आदि दर प्रवान करो घड़िया लिख लाओ संगत का दर से तिर फुर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी धन धन गुरु नानक दतार पिता जी आपके चन का अरदास दतार जी आपने कृपा की बख्शिश की दतार पिता जी आदि दर कर सेवादार काका गुरकीर्त सिंह के जन्मदिन की खुशी में दतार जी परिवार वालों आपके चरणा धनवाद कर दिया शुक्रिया अदा कर दिया बेहद मैं आपके चरणा पेटा करते प्रवान करो दतार बख्शिश कर दिया काका गुरकीर्त सिंह तंदुरुस्ती बख्शो बच्चे लंबी आयु बख्शो माता पिता धर्मदेश कौम का आग्ञा कार बख्शिश कर दतार बच्चे ने गुरसिखी दाज बख्शिश करके उच्ची विद्या की दाज बख्शो सेवक के सारे परिवार में तंदुरुस्त हो शांति चढ़ कलाकारी कमाइया सबर गुरदाता इलाज पत्र को जी गुरु गरीब नवाज कृपा कर दता सिख पंथ खालसा कौम एक दत्वाग प्यार की बख्शिश करके सत दाल बख्शो चैनल जोड़ो करवाने का प्यार कृपालता करो जी गुरु गरीब नवाज दूर दराडे कान बैठी लाइव कथा की श्रवण कर रही हैं सारी संगत की हाजिरियां प्रवान करो घड़िया लेखे लाओ दतारा अपने कृपा की संगत बख्शन
ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਪੇਟਾ ਕਰ ਚਰਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਭ ਕਰੋ, ਕਾਰਜ ਵੱਧ ਵਧਾਰ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਰਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆਓ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਮਾਹੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਿੱਤਰ ਕੋ ਨਾਮੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ ਬਰੰਤ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤ ਬਾਈ ਰਮਤਾ ਦਾ ਸੀ ਅੱਗਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤਨਾਵ ਦੀ ਬਣਾਓ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾ ਲਾਣੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾਰ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦਰਬਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਅਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ ਗੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ।

0: कहो नानक हर्षो मन मानिया रंग रते बिस्मादे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सत्कार योग साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज बख्शिश चार संगत ने मृषदा पावन साहब पृथक गुरबाणी सुखमी साधु संपूर्ण पाठ शरण किए हैं। इस वे सीधा समा जान के आपने सोदर रह साहब के पाठ शरण किए हैं। अरदास के साथ ये भरिया ने महाराज बख्शे पितुर राम शरण किए हैं। सो शास्त्री राज पाठ समागुर साहब ने आप सब गुरु पातों ने बख्शिश किया है। और सत्संग जी आप संगत ने बेनती है कि आप हर रोज शाम कीर्त पाठ शरण अटेंड करते हो। तो सारी संगत को बार बार बेनती है कि जरूर गुरु घर हर रोज आया करो और मत्था टेको अरदास करो। तो जिन्हें देर तक चाहे हमारे डिग्गी को बैठ के सत्संग जी कथा कीर्तन दरबार सर्व कर सकते हो। बाकी आज सब संगत को बेनती है कि जो आप देख रहे हो गुरु घर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो बेअंत माया का खर्चा होना है और बेअंत परिवार वालों दसवंध सफर करते हुए संगत ने माया गुरु घर भेटा की है। सो बटभागे हैं जिन्हें जिन्हों ने भी राम माई भाई ने अपना दसवंध सफल नहीं किया उन्होंने सारे बेनती है कि जरूर गुरु घर माया भेटा करके तुम अपने जीवन अपने माया कमाई में सफल करो तो गुरु दी खुशियां प्राप्त करो परिवार से सुख शांति वास्ते अरदास करो। सो सत्संग जी आप संगत बेनती है कि अज मेमोरियल डे है उसकी छुट्टी सारिया संगतों को जरूर वो तो आओ गुरु के चरण छाट बह के अपने जीवन की घड़ियां सफल करो। बाकी सत्संग जी मई 27 तो लैके 31 तक गुरु घर साहब के कीर्तन कर रहे हैं भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। आओ जरूर हर रोज आदि ला के गुरु दी कुड़ियां खुशी प्राप्त करो। तो सत्संग जी आप संगत ने बेनती है कि जून 1 तो लैके 7 तक हर रोज शाम के कीर्तन दरबार होया करेंगे कि जो साका नीला तारा सी उसकी याद में उन्होंने सारे शहीदों समर्पित। आओ सारे गुरु घर आके जरूर हाजियां पढ़ो तो उन्होंने आत्मा की शांति वास्ते अरदास करिए। गुरु महाराज चरण अरदास करिए उन्होंने अपने आत्मा चरण निवास बख्शिश कर पिछे पर सुख रखो। जून 2 है जन्मदिन बाबा जरनैल सिंह जी संत बाबा जरनैल सिंह जी पिंडर वाले का। तो आप संगत ने जरूर उस दिन हाजियां पढ़ के उन्होंने चिंता रिपीट करनी है। तो सत्संग जी आओ आप संगत ने बेनती है कि जून 4 है अटैक ऑन अकाल तख्त 1984 का। सो सत्संग जिन्हें जिन्हें माई भाई ने उस समय अखी देखा वो जानते हैं भयानक समा से। सत्संग जी उन्होंने जिन्हें जिन्हें संगत ने हरिमंदर साहब की पुत्रता कायम रखने वास्ते उसकी शाना शक्त बचाने वास्ते अपन माई भाई बच्चे ने कुर्बानियां दीं। अभी सारे 4 जून गुरु घर साहब दी पढ़ के उन्होंने आत्माकियां अरदास करिए उन्होंने श्रद्धांजलि भेट करिए। और सत्संग जी भाई हरप्रीत सिंह जी तैयार ने आपूर्बाणी कीर्तन शरण कराने। सो भाई साहब ठीक 7 बजे तक आरती कीर्तन आसमान द्वारा संगतों को मर साहब चैनल जोड़ने वास्ते मान पाला करेंगे। 7:00 to 7:45 तक कथा होनी है। 7:00 to 8:30 बजे तक कीर्तन करेंगे भाई सुरजीत सिंह जी रसीला। सो सब संगतों बेनती 8:30 तक कथा की दिवस शरण करो। आओ भाई साहब तैयार ने कीर्तन का नहीं शरण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
2: श्री वाहेगुरु।

कहो नानक सब तेरी वड्याई। बोला जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अरदास ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वाह श्री भगवती जी की पातशाही। दसवीं प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासियां हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौने दावे ताए। सब थाई होना सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होना सहाय। दसा पातशाह की जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार का ध्यान करके बोलना जी। धन धन श्री गुरु नानक देव गोविंद रूप सतगुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। आप जी का कोटान कोट शुक्र लख लख धनवाद। अमृत वेले तो लैके इस वेले तक आप जी ने अपने पवित्र पावन खुले दर्शन दारे बख्श के समूह संतान निहाल किया है। इस वेले आप जी के हजूर कीर्तन सुहले साहब जी के पाठ हुए। सुखासन की सेवा हुई। बाणी का पाठ करद सुखासन की सेवा करद अनेक ही प्रकार दुलां गलतियां हो गई होनगियां। अंजान बच्चे समुचके बख्श लेना। अगो वास्ते शुद्ध से स्पष्ट बाणी पढ़ने की शुद्ध सेवा करने की मत बख्शनी। आप जी के भाणे अंदर चार पैर दिन सुख नाल बतीत हो। रात्रि आई भाणे अंदर सुख नाल बतीत करावना। अमृत वेले दा जागना बख्शना। आप जी के पावन सुखासन साहब तैयार हैं। आप जी अपने आसन से विश्राम करो। समूह संतान छुट्टिया बख्शो। अखरवाद घाट पड़िया पुलचुक माफ करना। सरबत दे काज रास करने। सही संत प्यारे मेलने। जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। नानक नाम चढ़दी कला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले।

सद्गुरे नमः, सद्गुरे नमः, श्री गुरुदेव नमः। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहि मिटावो। सिमरो जास विशंबरे कै, नाम जपते अगंत अनेक कै। वेद प्राण सिमर सुदाख्यर, कीने राम नाम एकाख्यर। किनका एक जिस जीव सावै, ताकी महिमा गनी न आवै। काकी एक दर्श तुहारू, नानक उन संग मोहे उदारू। सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। रहाऊ प्रभ कै सिमरन गर्भ ना पसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। प्रभ कै सिमरन भाव न ब्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिन सह दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दर गह मानी। प्रभ कै सिमरन हुए सुफला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला। सी सिमर है जिने आप सिमराए, नानक ता कै लागो पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद्ध माहि समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरह से तनवंते, प्रभ को सिमरह से पतवंते। प्रभ को सिमरह से जन परवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरह से बे मोहताजी, प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे। प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा विनाशी। सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगर वाला। प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी। प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावै। प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरह तिन अनंद कनेरे, प्रभ को सिमरह बसै हर नेरे। संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभ कै सिमरन कारज पूरे, प्रभ कै सिमरन कबहु न चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सह समानी। प्रभ कै सिमरन निचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन। प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ का सिमरन सुख प्रभ सिमरन कांत न पार। सिमरह से जन जिन को प्रमया, नानक तिन जन सरनी पाया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए। हर सिमरन पाए सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीचम कुंट जाते। हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन की सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ सात अष्टपदी। जय मात पिता सुत मीत न पाई, मनुहा नाम तेरे संग सहाई। जय महा भयान दूत जम दलै, तै केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल हुआ अत भारी, हर को नाम किन माए उदारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया। लाख करोरी बंधन परे, हर का नाम जपत निस्तर है। अनिक माया रंग तिक न बुझावे, हर का नाम जपत आघावे। जी मार्ग जात केला, तै हर नाम संग होत सुगेला। ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है। छूटत नहीं कोट लकबाही, नाम जपत है पार पुराही। अनिक बिघन जाय आए संघार है, हर का नाम तत्काल उधार है। अनिक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हो मैला
मल कब न धोवै हर का नाम कूट पाप खूवै ऐसा नाम जप मन रंग नानक पाई साध कै संग जे मार के गने जाए न कोसा हर का नाम मुहा संग तोसा जे पेड मंद गुबारा ते हर का नाम संग उजियारा जाह बंत तेरा को न सिंहानू हर का नाम तै नाल पछानू जय महा भयान तप तु काम तै हर के नाम की तुम पर छाम जा त्रिका मन तुझ आकर खै तै नानक हर हर अमृत बर खै भग जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ऊट हर कै नाम उदरे जनकूट हर जस करत संत दिन रात हर हर औकद साध कमात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मंथन रंग रते रंगे कै नानक जन कै ब्रत विवेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परै न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहि वियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मालक जीना हर धन जन कुआ प्रभ दीना हर हर जन कै ओट सुतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पूजन हर रस राते सुन समाद नाम रसमाते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बह करे नानक जन संकेते तरे पार जात्यो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लत्था नाम की महिमा संत हृदय संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग विड भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल कछ अवर न हुए नानक गुरमुख नाम पावै जन को ए श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम मूल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान कट शास्त्र सिमरत वख्यान जोग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगल त्याग बन मध्ये फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रत्ना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपी एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीव माँ उदास तुपी सरथी वै अगन माय हुमत प्राण कनिक सब है वर भूम दान न्यौली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजम मत साधन निमक निमक कर शरीर कटावे ताओ पी हो मैं न जावे हर के नाम सम सर कछ नाही नान गुरमुख नाम जपत गत पाहि मन कामना तीर दे छुट्टे गर्भ गुमान मन ते उठे सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कबू न बिख्या टरे जल तो वै बहु देह अलीत शुद्ध का हुए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहमूच बहुत सियाण जम का पौ व्यापै निक जतन कर तृष्णा त्रापै भेख अनेक गनी बुझै कूट उपाव दरगै नहीं सिजै छूट सुनायु पयाल मुह व्यापै माया जाल अवर करतू सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जप दुख जाए नानक बोलै सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगै साजना की सेवा लागै जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सदगावै जे को अपनी शोभा लूरै सा संगे हों मैं छूरै जे को जन्म मरण ते डरै साजना की सरणी परै जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान सा संग जाका मिटै अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गणिय सब ते उच्चा जाका मन हुए सगल किरीना हर हर नाम चिन कट कट चीना मने अपने ते बुरा मिटाना पेख सगल सृत साजना सुख दुख जन समदृष्टिता नानक पाप पुन लेपा निर्धन को तन तेरो नाओ निथावे को नाव तेरा थाओ निमाणी को प्रभ तेरो मानु सगल कटा को देव दान करण करावन हर स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गतमित जन हुआ पे अपन संगा प्रभराते तुमरी उष्ट तुम ते हुए नानक अवर न जान सुखोए सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम है उदम भला हर का नाम जपो जी सदा
सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल तान ते उत्तम थानु नानक जी घट वसै हर नाम सलोक निर्गुण यार एआनिया सो प्रभ सदा संभाल जिन किया तिस चीत रख नानक निभही नाल अष्टपदी रमैया की गुण चीत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू सासुआर सिंगारिया गर्भ अग्न में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध भर जोबन भोजन सुख सूद बिरध पया उपर साक्षैन मुख पयाउ बैठ को दैन एव निर्गुण गुण कछु न बुझै बख्स ले हो तो नानक सीजै जे प्रसाद धारू पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पाव कमुला जे प्रसाद भोगै सब रसा सगुल समग्री संग साथ बसा दीने हस पाव करनी तरसना तिसै त्यागवर संगरचना ऐसे दोख मुड़ंद व्यापे नानक काढ़ लिओ प्रव्यापे आद अंत जो राखन हार तिस्यों प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नम निड पावै तास्यों मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सरसदा हजूरे ताको अंदा जानत दूरे जाकी टहल पावै धर गै मान तिसै बिसारै मुग्ध जान सदा सदायो भूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्या कौडी संगरचै सा छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्द प्रीत पसम संग हुए आंध को मैं पतत बिकराल नानक काट लिहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मान सुजात लोक बचारा करै दिन रात बाहर भेघंतर मल माया छप सुनाए कछ करै छिपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ सुहा अंतर अग्न बाहर तन स्वाहा गल पाथर कैसे त्रय था जाके अंतर बसै प्रभ आप नानक तेजन सह समात सुनंदा कैसे मार्ग पावै कर गह ले हो ओढ़ निभावै कहां बुझारत बुझै डोरा निष्कही है तू समझै पूरा कह विष्ण पद गावै गुंग जतन करै ताओ पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तू आ उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय सुहावै न चीत जो बैराई तास्यो प्रीत बलुआ के ग्रे पीतर बसै अनद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मानै मने प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लिहो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते उच्चा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हुए सुहाग्याकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कह लग हयान सुहाए नानक कहू न सी जई बिन्नावै पत जाय अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावै एक वस्त कारण बिखोट गवावै एक पीना दे दस भीर ले तौ मूड़ा कहु कहा करे जिस ठाकुर स्यो नाही चारा ताकू कीजै सद नमस्कारा जा कै मन लागा प्रमीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व थोग नानक तिन पाया गंत साहु अपनी देरास खात पीत बरतैन दोलास अपनी अमान कच बाहुर साहु ले अज्ञानी मन रोष करे अपनी प्रतीता पीक होवै बहुर उसका विश्वास न होवै जिसकी वस्ति से आज्ञा राख्या प्रभ की आज्ञा मान माथ उसते चौगुण करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनिक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिर की छाया स्यो रंग लावै ओ बिनसै ओ मन पुछतावै जो दिसै सो चालन हार लपट रहो तै अंध अंधार बटाऊ स्यों जो लावै नेहे ताको हाथ न आवै के ही मन हर के नाम की पुरी सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटम सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रुव अभिमान मिथ्या पशु प्रकृत गुमान अस्थिर भग साध की शरण नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरै मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावह मिथ्या मन पर लोभ लुभावह
मिथ्या तानी परोपकारा मिथ्या बास लेत बिकारा बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल दे नानक हर हर नाम ले बिरथी साकत की आर जा साच बिना कहूत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुकावता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बृथा बिहाय मिग बिना जो खेती जाय गोविंद भजन बिन बृथे सब काम जो कृपण के निरार्थ दाम धन धन ते जन जी कट बस्यो हर नाउ नानक ताके बल बल जाओ रह तवर कचवर कमावत मन नी प्रीत मुखो गंडलावत जन नहार प्रभु पर बीन बाहर भेख न काहू पीन वर उपदेश आप न करे आवत जावत जन मै मरे जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नान कुंजन चरण पराता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया या पह मान या पह आप करत न बेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव सियान सगल तेरा सब कर जाने आत्म की रहत जिस भाव है तिस लय लड़लाए थान थनंतर है समाय सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अंग मेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपति जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मने अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जो जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्यागत अवर लुभाव है जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर था का जस गावी जय जे प्रसाद तु सब को माने मुक्ता को जस रसन बकाने जे प्रसाद तिर रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब दर गय मान पावे नानक पद सेती कर जावे जे प्रसाद अरु कंचन देही लिवलावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तिरउला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रवता कह जे प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सा सा सिमरो प्रभु उच्चे जे प्रसाद पाए दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे हे जे प्रसाद अपूखन पहरी जय मन ति सिमृत क्यों वालस की जय जे प्रसाद अश्व हस्त सवारी मन तिस प्रभ को कबू न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राख प्रो पर भी अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठ सत तिसै त्याय जो एक अलक है इहां उहां नानक तेरी रखै जे प्रसाद करै पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सा सा चितारी जे प्रसाद तेरे सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा नूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहे गुरु प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करनाद जे प्रसाद पेख विस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परमगत भावै जे प्रसाद सुख सह समावै सब प्रभु त्याग अवर कतलागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तु ताको जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता स्योराच जे प्रसाद सबकी गत हुए नानक जाप जपै जप सो आप जपाए जपै सो नाओ आप गाव आय सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सुप्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभ तेरी माया पू कछु न किन्हु लया जित जित लावो तित लगै हरनाथ नानक किन कह कछु न हाथ श्लोक अगम गात पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुखता होए सुनमीता नानक बिनवंता साजना के चर्ज कथा अष्टपदी साधक संग को जल होत साध संग मिल सगली को साध के संग मिटै बिमान साध के संग प्रगटै सुग्ञान साध के संग बुझे प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्मा ही सुमानी साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ल साध के संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुई सब की रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतू तावै साध संग स्थित मन पावै साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैरु साधक संग न भीगा पैरु साधक संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग नाही हो ताप साधक संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई
साधक संग न कबूता वह साधक संग सदा सुख पावे साध संग बस्तगुच्चर लह साधु कै संग जर सह साधक संग बसै थान उच्च साधु कै संग महल पहुंचे साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाई नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साधक संग सब कुल उधार है साध संग साजन बीत कुटम निस्तार है साधु कै संग सो धन पावे जिस धन ते सब को वरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप फलायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्व थान गामु नानक साधक संग सफल जनामु साधक संग नहीं कचकाल दर्शन भेटत होत निहाल साधक संग कलूखत हरै साधक संग नरक पर हरै साधक संग यहाँ उहाँ सुहेला साध संग विचरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावै साधक संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साध हृद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साधक संग सुनो हर नाम साध संग हर के गुण गाओ साधक संग न मन ते विसरै साध संग सर पर निस्तरै साधक संग लग्या परम मीठा साधु कै संग घट गडीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा भेद न जानै जेता सुनै तेता बख्यानै साध गुपमा त्यो गुण ते दूर साध गुपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सुदा बेअंत साध की शोभा उचते उची साध की शोभा मूचते मूची साध की शोभा साध बने आई नान सद पर भेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोय अवर न पे कै सुबिन कोय नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय अष्टपति ब्रह्म ज्ञानी सुधा नरलेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व कौ सुख ब्रह्म ज्ञानी कह दृश्य मान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कह धीरजेक ज्यो बसदा को खुद है कु चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यो पाव का सह सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कह मन हुए प्रगा जैसे तारू पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र शत्रु समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उच्चते उच्चा मने अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जिन पाए नानक जिन प्रभाव करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी ना तुम रस ब्रह्म ज्ञानी छीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल युक्ता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी को प्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी का हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभसंग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी का हो चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस कर प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माही ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय आखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार ब्रह्म ज्ञानी का सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी साध जीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक उतार है जो अंतर नाम सर्व मै पिक है भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कार है नानक अपर सगल निस्तार है अष्टपति मिथ्या ना ही रसना परसु मन में प्रीत निरंजन दर्शु पर त्रैरूप न पिक है नेत्र साध की टैलसन संग हेत कर न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हरे मन की बास न मन ते टर इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानकूट मध्य को ऐसा परसु वैष्णु सोजी सुपर सुप्रसन्न विष्ण की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हो वह ने कर्म तिस वैष्णु का निर्मल धर्म का उफल किच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग्राचे मंत्र निरंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ वह नाम जपावै नानक वैष्णु परम गत पावै
ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ ਮਨ ਤੇ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਗਲਾ ਭਰਮ ਕਰ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾ ਮਲ ਖੂਵੈ ਤਿਸ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਵੈ ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੈ ਨਿਤਨੀਤ ਮਨ ਤਨੀ ਅਰਪੈ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੈ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ ਸੁ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਹੈ ਸੁਧ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੈ ਸੁ ਪੰਡਿਤ ਫਿਰ ਜੋ ਨਾ ਆਵੈ ਭੇਦ ਪ੍ਰਣ ਸਿਮਰਤ ਬੂਝੈ ਮੂਲ ਸੁਖ ਮੈਂ ਜਾਣੈ ਅਸਥੂਲ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਨਕ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ ਚੋ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜਪੈ ਕੋ ਨਾਮ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਸਾਹ ਸੁਨ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰ ਉਤਾਰ ਹੈ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਕਤ ਪਾਤਰ ਕੋ ਉਤਾਰ ਹੈ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾਉਖਦ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ ਕਾਹੂ ਜੁਗਤ ਕਿਤੈ ਨਾ ਪਾਈਐ ਧਰਮ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਸ ਕੈ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤਿ ਰਾਮ ਦਾਸ ਆਤਮ ਰਾਮ ਤਿਸਨ ਧਰੀ ਆਇਆ ਦਾਸ ਦਸੰਤਨ ਭਾਇ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਣ ਸੋ ਦਾਸ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸ ਦਾਸ ਕੋ ਸਭ ਸੋ ਜੀ ਪਰੈ ਸਗਲ ਸੰਗ ਆਤਮ ਉਦਾਸ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮਿਤਾਵੈ ਜੀਵਨ ਮੁਖ ਸੋ ਕਹਾਵੈ ਤੈ ਸਾਰਕ ਤੈਸਾ ਸੋਗ ਸਦਾਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸਮਾਟੀ ਤੈ ਸਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖਾਟੀ ਤੈ ਸਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕੋ ਪੁਰ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ ਜਿਤ ਜਿਤ ਘਰ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿੰਨ ਆਓ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋਗ ਪਸੁਰ ਆਪ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋਗ ਪਸੁਰ ਆਪ ਅੰਤਰੰਗ ਲਖੇ ਨ ਜਾਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਰੰਗ ਜੈਸੀ ਮਾਧੀ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਉਸਤਤ ਕਰੈ ਅਨੇਕ ਜਨੰਤ ਨ ਪਾਰ ਅਵਾਰ ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁ ਵਿਧਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਭਰਮੈ ਉਦਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਤੁਪਿਸਰ ਹੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਕਵ ਕਾਵਿ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੰਤ ਨ ਪਾਵੈ ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧਾ ਗਿਆਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਅਭੇਗਾਤਮ ਨਿਕੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਭ ਕੋ ਹਿ ਰਹਿ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰਹਿ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸਰਮਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਹੇ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲੱਗਣਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ਕਈ ਕੋਟ ਸਿਰਜਤੀ ਜੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪ ਜਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ਼ ਭੂ ਮੰਡਲ ਕਈ ਕੋਟ ਸਸਿਅਰ ਸੂਰ ਨਖੇਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣਾ ਸੂਤਾਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਮ ਸਾਤਕ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰਸਾਸਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਚਿਰ ਜੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਜਕੀ ਨਰ ਪਿਸਾਚ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇ ਸੁਕਰ ਮਿਰਗਾ ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੈ ਸਭੂ ਤੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਿਪਤ ਰਿਹਾ ਭਾਰਪੂਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬੋਜੋਨੀ ਫਿਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੈ ਤਕ ਪਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਰਤਨਵੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤੈ ਤੈਰਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੀ ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਬੈਰਾ ਗੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ ਆਤਮੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪਿਆ ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੈ ਸਤਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਇ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਣੀ ਅਰ ਖੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਕਈ ਜੁਗਤ ਕਿਨੋ ਵਿਸਥਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰੇ ਉਪਾਸਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਕੇ ਕੰਕਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਨੇ ਬਹੁ ਭਾਤ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਮਾਤਾ ਕੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ ਤਿਨ ਹੋ ਤਾਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਕੋ ਨੇਤਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਭੈ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵੇ ਕਹਿ ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਨੈ ਜਲ ਤਲ ਮਹੀਲ ਸੋਇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋ ਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਪ ਥਾਪਨ ਹਾਰਾ ਅੰਤ ਨੇ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਧਾਰ ਰਹਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਉੱਚ ਨੀਚ ਵਿਹਾਰ ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਮੈ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਮਾਨੁਗਤ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਤਰਾਵੈ
प्रभाव है बिन शास्त्री राख है, प्रभाव है ता हर गुण भाख है, प्रभाव है ता पचत उदार है, आप करे अपन विचार है, दुआ सिरे का आप स्वामी के लिक्ष अंतर जामी, जो भाव है सुकार करावे, नानक दृष्टि अवरण आया वह कहो मानुक ते क्या हो आवे, ज्योतिष भाव है सुई करावे, इसके हाथ हुए ता सब किच ले, ज्योतिष भाव है सुई करे अनजान बिख्या मैं रचे, जी जानता अपना बचे पर मैं भूला, दह दिशा आवे निमक माए चार कुंड फिरे आवे, कर कृपा जिस अपनी पग दे नानक तेजन ना मिले, किन मैं नीच कीट को राज, पार ब्रह्म ग्रीव निवाज, जाका दृष्ट कछु न आवे, तिस तिस काल दे दिस प्रगटावे, जकु अपनी करे बख्शीस ताका लिखा न गने, जगदीश जियो पिंड सब तिस की रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनता बनाई, नानक जी वैदिक बढ़ाई, इसका बल ना ही सहाथ, करण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस भावे सोई फुंथियो, कब हूँ ऊंच नीच में बसे, कबू सोग हर करंग हसे, कबू निंद चिंद व्यवहार, कबू बकाश प्रयाल, कबू बेता ब्रह्म विचार, नानका मिलावन हार, कबू नृत्य करे बहुपात, कबू सोए रहे दिन रात, कबू मां क्रोध विकराल, कबू सर्व की हो त्रिवाल, कबू होए वह बट राजा, कबू पे खारी नीच का साजा, कबू भगीरथ में आवे, कबू भला भला कहावे, ज्यों प्रवरा कहते भी रहे गुरु प्रसाद, नानक सच कह, कबू हो पंडित करे विज्ञान, कबू मुन धारी लावे ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सिर साधिक मुख ज्ञान, कबू कीट हस्त पतंग होए जिया, निक जुन पर मैं पर मिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावे, जो प्रभावे तिवै निचावे, जो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा वर न कोय, कबू सात संगत उपावे, सो स्थान ते बौर नावे, अंतर हो ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मंत्र नाम रतिक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म के संग, ज्यों जल में जले आए खटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु का सद कुर्बान, श्लोक सुखी बसै मस्कीनी, आया अपनिवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया, नान गर्भ गले अष्टपति, जिसके अंतराज विमान, सो नरक पाती हो स्वान, जो जानै मैं जो बनवंत, सो होवत विष्टा का जंत, आपको करवंत कहावे, जन मरै बो जो न प्रमावै, धन भूमिका जो करे गुमान, सो मूर्ख कंधा ज्ञान कर कृपा, जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानकिया मुक्ता गया सुख पावे, धनवंता हुए कर गर्भ आवे, तिन समान का संग न जावे, बोल उसकर मानुक ऊपर करे आस, पल भीतर ताका हुए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, किन मैं हुए जाए पसमंत, किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी, गुर प्रसाद जाका मिटा बिमान, सो जन नानक तर गय परवान, कोट कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले बिरतारे, नक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, नक जतन करा तुम नहीं द्रव्य, हर दर गय को कैसी गवे, आपस को जो भला कहावे, तिसे भलाई निकट न आवे, सर्व गिरें जाका मन होए, कौ नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाना मुझते कछ होए, तब इसको सुख ना ही कोए, जबे जाना मैं किच करता, तब लग गर्भ जून मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लगने चलना ही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक हो छूटे, सहस खटीला कूट तावे, तृप्त न आवे, माया पाछे पावे, निक भोग विख्या की करे, न तृप्त आवे खप कमरे, बिना संतोख नहीं कूरा, जय स्वप्न मनोरथ व्यर्थ सबका, जय नाम रंग सर्व सुख बड़भागी, किसे प्राप्त होए, करण करावन आपे आप, सदा सदा नान कर जाप, करण करावन करण हार, इसके हाथ का विचार, जैसी दृष्टि करे तैसा हुए, आपे आपा प्रभ सोए, जो किच गिनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबु कै संग, बूझै देखे करे विवेका, पह का पै, अनेक मरे न बिन सयावे न जाए, नानक सद ही रहा समाए, आप उपदेशै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप किनो अपन विस्तार, सब कछ उसका करने हार, उसते पिन कहो किच होए, थान तनंतर एक कै सोए, अपने चलता आप करने हार, कौत करे रंग आप हार, मन मै अमन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए, सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद, किने वकियानी सच सच सच सब कीना, कोट मध्य किने बिरले चीना, भला भला भला तेरा रूप, वा सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, कट कर सुनी श्रवण बकियानी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत, श्लोक संत शरण जो जन परै, सो जन उतरन हार, संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार, अष्टपति संत कै दुखन आरजा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुट्टै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कह दुखन नरक में पाए, संत कह दुखन मत हुए मलिन, संत कह दुखन शोभा तेहीन, संत के अति को रखे न कोई, संत कह दुखन तान फस्ट हुए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संसंग निंदक भीतर है, संत के दुखन ते मुख भवे, संतन कह दुखन काग जुन लवे, संतन कह दुखन सर्प जोन पाए, संत कह दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन कह दुखन तृष्णा में जले, संत कह दुखन सब कुछ चले, संत कह दुखन ते सब जाए, संत कह दुखन नीच निचाए, संत दुखी का था को नाही, नान संत पावे कौ भी गत पाहे,
संत का निंदक मात ताई संत का निंदक किन टिक न पाई संत का निंदक महात्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखियार दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत की निंदा दुख में दुख नानक संत पावे तो उसका भी हुए मोक संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लग गए संत के दुखी को सब त्याग गए संत का दुखी माँ अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख न सुख ते डरे संत के दुखी को ना ही टाओ नान संत पावे तो लय मिलाए संत का दुखी अत बीच ते टूटे संत का दुखी किते काज न पहुंचे संत के दुखी को ध्यान भरमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते थोथा ज्यों सास बिना मृत की लोथा संत के दुखी की जड़ किचना है अपन भी जापे ही खाए संत के दुखी गवर न रखन हार नानक संत पावे तन लय उबार संत का दुखी हों बिललाए ज्यों जल भी हुन मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यों पाव किंदन नहीं त्रापे संत का दुखी छुट्टे केला ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला संत का दुखी धर्म तेरे संत का दुखी सदमित्या कैद कीर्त निंद का तुर ही पाया नानक ज्योति पावे सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दर गया मिले सजाए संत का दुखी सदा सह काइया संत का दुखी न मरे न जीवाइय संत के दुखी की पुजय न आसा संत का दुखी उठ चले निराशा संत का दुख न त्रष्ट है कोई जैसा पावे तैसा कोई होए पया कीर्तन मिट है कोई नानक जाने सच्चा सोई सब कर तिसको करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तुत करो दिन रात सास गिरा सब कछ वरता तिसका किया जैसा करे तैसा कुथिया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनु कृपा करे तिस अपन नाम देवड़ भागी नानक जन से श्लोक तजो सियानप सुरजनो सिमरो हर हर राय एक आसर मन रखो नानक दुख भरम भो जाय अष्टपदी मानुक की टेक वृत्ति सब जान देवन को एक है भगवान जिसके दिए रहे अघाए बौर न तृष्ण लग गया मारा रखे कुआ मानुक है कुछ नाई हाथ जिसका हुकुम भू सुखोए जिसका नाम रखंड प्रोय सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन लग गए कोई उस्तुत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसनामृत पी सदा सुहेला कर लह जियो नैनो पेक ठाकुर का रंग सा संग बिंद सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दर गैनान कूजन मत्था बिट भागी ते जन जग माए सदा सुधार के गुण गाए राम नाम जो करे विचार से तनवंत गणी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानू ते सुखी एको एक एक पहचाने तुत कियो सो जी जाने नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिने निरंजन जाने आ गुरु प्रसाद अपन आप सुजय तिसकी जानू तृष्ण बुजय सा संग हर हर जस कह सर्व रोग त्यो हर जन रहत अंदर कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जि जन किया सा तिसकी कटी जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिस न लागे दुख जिसको हर ब्रह्म चित आवे सुसन सुहेला नहीं डुलावे जिस पर वे अपना कृपा करे सो सेवक को किस ते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद ता सब बुझिया जब देखूं तब सब किच मूल नानक सो सुखम सोय स्थूल न किच जन्मे न किच मरे अपन चलता पी करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मैं आप वनिक जुगत रचता पुताप अविनाशी नाहीं किच खंड धारण तार हो ब्रह्मांड अलख अभे पुरख प्रताप आप जपाए गो नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सो पावन सगल संसार उदरै तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेले कृपाल गुरु का सब जप भय निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करह बड़ भागै नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख उत्तम करमान जो किच करे सुप्रभ कै रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाय हुवे सु हुए करने हर पछाने सोए प्रभ का किया जन मीट लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तिस माए समाये हुए सुख निदान उनु बने आया पिसको आप दिन मान नानक प्रभ जन एक को जान श्लोक सर्व कला भरपूर पर व्यथा जन नहार जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गांड नहार गोपाल सर्व जी आय अपे प्रतपाल सर्व की चिंता जिस मन वाहे सगल की चिंता जिस मन वाहे तिस्ते विरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ्या पे आप अपन किया कछु न होए जिस सो प्राणी लुचै कोई तिस बिना ही तेरे किच काम गत नानक जप हे कर नाम रूपवंत होए ना ही मुह है प्रभ की जो सगल कट सो है धनवंता होए क्या को गर्भ है जा सब किस तिसका दिया दर्भ है सूरा जे को कहा वह प्रभ की बिना कला बिना कहता वह ये को हुए वह दातारु तिस दिन हार जाने गवारु जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सूजन सदा रोग
जो मंदिर को थम है थम मन त्यो गुरु का शब्द मन है स्तम मन जो पाका नाव चढ़तर है प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है जो अंधकार दीपक प्रगास गुरु दर्शन देख मन हुए बिगा जो माँ ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिम संतन की बांचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर काहे बिललाई है पूर्व लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख प्रभ देव नहार अवर त्याग तू सिसे जो कछ करे सोई सुख मान पूला काहे फिर जान कौन बसताई तेरे

सा सुंदर कीर्तन गाइये, अनिक विदंते साधु राखे, हर गुण गाय अमृत रचा कह, उठ गई संत दरियाया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृतक को जीवल नहार, भूखे को देवता दार, सर्व निदान जाके दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाए, सब किस तिसका करने जोग, तिस बिन दूसर हुआ न होग, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब त्यूच निर्मल करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सूजन निर्मल थिया, जा कै मन गुर की प्रतीत, तिस जने आवे हर प्रवचीत, भगत भगत सुनिए त्यो लोए, जा कह देखो हुए, सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सत मुख कहत, सची दृढ़ सचायाकार, सच वर्तै सचा पासार, पार ब्रह्म सिंह सच कर जाता, नानक सूजन सच समाता, श्लोक रूप न रेख न रंग के चित्र गुण ते प्रभिन्न, तिसे बुझाए नानक जिसु है सुप्रसन्न अष्टपदी, अविनाशी ब्रह्मन में राख, मानुक की तू प्रीत आग, तिस्ते परै नाही किछ गोए, सर्व निरंतर एको सोए, आपे बिना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निदान दयाल बख्शंद, सा तेरे की चरणी पाऊ, नानक कै मन हो अनुराऊ, मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग, हरण भरण जाका नेत्र फूर, तिसका मंत्र न जाने होर, अनद्रु मंगल सजा कै, सर्व थोक सुनिए करता कै, राज में राज युग में जोगी, तप में तपीश्वर गृहस्थ में भोगी, त्याई त्याई भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरुष का किन अंत न पाया, जा की लीला की मित नाही, सगल देव हारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत, सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, जिन दास नाम त्या वैसे, त्यो गुण में जा को परमाए, जन्म मरे फिर आवे जाय, उच नीच इसके स्थान, जैसा जना वै तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना भे करे एक रंग, नाना बिद किनो विस्तार, प्रभ अवना सुए कंकार, नाना छल करे किन माए, पूरे हो पूर्ण सब ठाए, नाना बिद कर बणत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवे नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सूजन गत पाए, रूप सत जा का सत स्थान, पुरुष सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरुष समाहे समानी, सत कर्म जाकी रचना, सत मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सफली, सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नान गुर ते पाई, सत वचन साधु उपदेश, सत ते जन जा कर हृदय प्रवेश, सत निरत बुझै जे कोई नाम जपता की गत हुए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सिरसो करने हार, अवर न बूझ करत विचार, करते कि मित न जाने किया, नानक ज्योत स्वभाव है सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म रहे बिस्मन बिस्म पय बिस्माद, जिन बुझे तिसे आया स्वाद, प्रभ कै रंग राज जन रहे, गुरु कै वचन पदार्थ लहे, हुए दाते दुकाट नहार, जा कै संग तरह संसार, जन का सेवक सोवट भागी, जन कै संग एक लिव लागी, गुण गोविंद की।

प्यारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर कौ सेवक जान संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवक प्रपालन हारा सेवक की रखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धारे नानक सो सेवक सा सुमारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रखे ताकि गतमित कोई न लखे प्रभ के सेवक को न पहुँचे प्रभ के सेवक कुछ ते उचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दै दिस प्रगटाया नीकी कीरी मैं कल रखे भस्म करे लश्कर कोट लाखे जिसका शासन काढ़त आप ताको राखत देकर हाथ मानस जतन करत भात तिसके करत बिरते जात मारन राखे अवर न कोए सर्व जिया का रखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडानी बारंग बार बार प्रभ जपी है पी अमृत्यो मन तंत्र पिय नामृत अंजन गुरमुख पाया तिस किच अवर नाही दृष्टाया नाम धन नामो रूप रंग नाम सुकर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ताने मर तो नाम है नाम सुमाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सदकाम बोलो जस जेहबा दिन रात प्रभ अपने जन की नींदात करे भगता तुम कह चाहे प्रभ अपने सो रह सुमाए जो हुआ हुवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानू तिसका गुण कह एक न जानू आठ पहर प्रभ बसे हजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिनकी ओट ले मन तन अपना तिन जन दे जिन जने अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्श सब पाप मिटावे अवर से

0: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। श्लोक
1: सतपुरख जिन जानिया सतगुरु तिस का नाउ तिसके संग सिख उदरे नानक हर गुण गाओ अटपरी। सतगुर से की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल। सेकी गुर दुरमत मलहिरे गुर बचनी हर नाम उचरे। सतगुर सेके बंधन काटे गुर का सेख बकार ते हटे। सतगुर सेको नाम तंदे गुर का सिख उड़ भागी। सतगुर सेका हलत पलत सवारे नानक सतगुर सेको जी नाल संवारे। गुर के ग्रह सेव को जो रहे गुरु की आज्ञा मन में सहे। आप को कर कछ न जनावे हर हर नाम ले सत्यावे। मन बेचे सतगुर के पास ते सेवक के कार्य रास। सेवा कर तो है ने कमी जिसको हो प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे नान सो सेव गुर की मतले। बीस विश्वे गुर का मन मने सो सेव परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुरु हृदय नाओ अनक बार गुर को बल जाओ। सर्वना जी का दाता आठ पैर पर भ्रता। ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं के परम। सह सियान लयान जाइए नान कैसा गुरुड़ पाकी पाइए। सफल दर्शन पीख प्रनीत पर्स जन कर निर्मरीत। पेट संग राम गुरवे पार ब्रह्म की दर्घ कवे। सुन कर बचन कर अगाने मन संतोख आत्म पत्याने। पूरा गुर आख्यो जा का मंत्र अमृत पेख्यो संत। गुण बेअंत कीमत ने पाए नान जिस पावे ते लय मिलाए। जे पाए कुस्तत नेक सात पुरख पूर्ण विवेक। काहू बोल न पवित प्राणी अगम्य गोचर प्रभ निर्बानी। निराहार निर्वैर सुखदाई का की कीम किने न पाई। अणक भगत बंधनित करे चरण कवन हृदय सुरे। सद बिलहारी सतगुर अपने नान जे प्रसाद ऐसा प्रज अपने। इवरस पावे जन कुए अमृत पीवे अमृत सोए। उस पुरका ना ही करे विनाश जाके मन परटे गुणतास। आठ पैर हर का नाम ले सच दे सेव को दे। मोह माया के संग नलीप मन में रखे हर रे। अंधकार दी प्रगासे नान परमो दुख तेना से। तौत में ठांड वरताई अंध पया दुख नाठे पाई। जन्म मर के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे। पौ चूका निरपोह बसे सगल व्याध मन ते कह नसे। जिसका साथ दिन कृपा तारी सासंग जप नाम रारी। थित पाई चूके परम गौण सो नान कर जसरुण। निर्गुण आप स्वर्गुण पियो ही कला तार जिन सगली मोई। आपने चित प्रवा बनाई अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा ना ही कोई सर्ब निरंतर एको सोए। ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रकाश साल के संग। रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलिहारी। श्लोक सात न चल बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कमावना नान प्यो तनसार परे संज नामिल करो विचार एक सिमर नामाधार और पाप समीत बसारो चरण कमल हृदय में उतारो कर्ण कारण स्वप्रत निर्खड़ गहो नाम रवत ए तन संचो हो भगवंत संजना का निर्मल मंत एक आस रख मन माए सर्व रोग नानक मिट जाए जे तन को चार कुणता हवे सो तन सेवा ते पावे सो तन हर सेवा ते पावे जे सो को नित बाचे मीत सुख सुख साधु संग प्रीत जे सोबा को करे पढ़ई करनी सा सोबा पज हर की सरनी अनक पावी रोग न जाए रोग मिटे हरख दलाए सरबंधान में हर नाम निदान जप नान दुर्गे प्रवान मन पर बोधो हर कह नाए दे देतावत आवेटाए ताको बिघन न लागे कोई जा हृदय बसे सोए काल ताती ठंडा ना हो सिमर सिमर सासु पाओ ओ बिन से पूर्ण व्यास भगत पाए आत्मरगास तित कर जाए बसे अमनसी कौ नान काटी जंपासी तात विचार कहे जन साचा जन मरे सो काचू काचा आवागमन मिटे प्रभु सेव आप त्याग शरण गुरुदेव तू रतन जन्म का व्यवधार हर सिमर प्राण धर अनक पाव न छूटन हारे सिमर सास वीर बिचारे हर की भगत करो मन लाए मन बचत नान पल पाए सांग न चालस तेरे तना तू क्याल बटावे मूर्ख बना सोत मीत कटंबर बनता इनते कहो तुम कौन सुनता राज रंग माया विस्तार इनते कहो कौन शिकार आशस्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ पसारी जीन दिए तिसे बजे न बगाना नाम बसार नानक पहचाना गुर की मातू ले अन्ने भगत बनावो डूबे सियाने हर की भगत करो मनमीत निर्मल होए तमारो चीत चरण कमल राखो मन माए जन्म जन्म के किलबक जाए आप जपो अवरा नाम जपाओ संत कै प्रयत कर पाओ सार पूत सतर को नाओ सहज पाए नान गुण गाओ गुण गावत तेरी उतर समैल बिनस जाए हमें बिफैल होए अचिंत बसे सुख नाल सास ग्रास हर नाम समाल छाड़ सियाण सगली मना सास पावे सचना हर पूंजी सच करो बिहार इया सुख दर्गे जे कर सर्ब निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जाप एको सलाहे एक सिमर एक मनाए एकस के गुण गाओ अनंत मंत्र जाप एक पवन एको एक एक आप पूर्ण पूर्व्याप अनक विस्तार एक ते पे एक राग प्राच पे मंत्र अंतर एक प्रवरता गुर प्रसाद नानक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाई नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाय अठपति
0: जाचक जन जाच प्रवधान
1: कर
0: कृपा देव हर नाम साध जना की मांगू तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु तुम्हें ते आवो चरण कमल स्यो लागे प्रीत भगत करूं प्रभु की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभु सार प्रभु की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाखिया से जन त्रिपताने पूरन पुरख नहीं डोलाने सुपार परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध कै संग परे शरण अन सब त्याग अंतर प्रगास अंतिम लिवलाग बडभागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेव किनु सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन मरण दुख भ्रम गया

तिन लिया मिलाए, नानक भगती नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल न भानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै। सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै।

प्रणाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावहु, आप जपहु अवरा नाम जपावहु। भगत पाए तरिया संसार, बिन भक्ति तन होसी चार। सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूटत जात पाए विश्राम।

मन तन यंतर एही सुआउ नेत्र उपेख दर्श सुख होए मन बिकसे साध चरण तोए।

जय कर्मया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्ब समाए, प्रभु बख्शंद दीन दयाल, भगत वच्छल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आद पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो हुए पुनीत, भगत

भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए। अनिक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाए। वो भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत। भली

अष्टपदी। जब अकार इहु कछ न दृष्टेता, पाप पुन तब कहते होता। जब तारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिहन न जापत, तब हर्ष शोक कहो किस है व्यापत। जब अपने आप पार ब्रह्म, तब मोह कहा किस हुवत परम। अपन खेल आप वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुकत कहो किस को गनी। जब एक है हर अगम पार, तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तरे, तब कवन निडर कवन कत डरे। आपन चलताप करने हार, नानक ठाकुर अगम पार। अविनाशी सुख अपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहा बिनासन। जब पूरन करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किच होए। जब अविगत अगोचर प्रवेका, तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर गादे, तब कौन छुट्टे कौन बंधन बादे। आपन आप ही अचरजा, नानक आपन रूप आप ही उपर जा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कोमान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश, तै छल छिद्र लगत कहु कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावे, तह किसे भूख कवन तृप्तावे। करण करावन करने हार, नानक करते का नहीं सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कलाया पह परवीन, तह वेद कतेव कहा कोचीन। जब अपने आप उरतारे, तो सगन अप सगन कहां विचारे। जय अपन ऊच अपने आप नीरा, तह कौन ठाकुर कौन कहिए चीरा। विस्मन विस्म रहे विस्माद, नानक अपनी गत जानो आप। जय अचल छेद भेद सुमाया, उहां किस है व्यापत माया। आप सुखाओ आप है आदेश, त्यो गुण का नाही प्रवेश। जह कह एक एक भगवंता, तह कौन चिंत किस लागे चिंता। जह अपन आप पतियारा,
तह कौन कथे कौन सुन नहारा बहु बेअंत उचते उचा नानक आपस कौ आपह पहुंचा।

नरक को स्वर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल हौ मैं मोह परम पै पार, दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बखियान, आपन खेल आप कर देखे खेल संकोचे तौ नानके कै।

अष्टपदी। आप कथै आप सुनने हार, आप है एक आप विस्तार। जाति सुपावै तां सृष्टि उपाए, आपने भाणे ले समाए। तुम ते भिन्न नहीं किछ होए, आपन सूत सब जगत परोए। जाको प्रभ जीव आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत का बेता, नानक सगल सृष्ट का जेता।

साथ, जिस राखे तिस कोए न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे, तिस तज अवर काहा को जाए।

अंतर बाहर जानो साथ, गुण निदान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार। पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहो व्याप। प्रतपालै जीयन बहुपात, जो जो रचियो सो तिस हत्यात। जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करहै हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करन हार नानक इक जानिया। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आस न बिरथी जाए। सेवक कौ सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसिया निरंकार। बंधन तोर पहे निर्वैर, अन दिन पूजे गुर के पैर। ये लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आप मिले। साध संग मिल कर हो आनंद, गुण गाव हो प्रभ परमानंद। राम नाम तत कर हो विचार, दुर्लभ देह का कर हो उदार। अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का इह सुवाओ। आठ पहर प्रपिक हो नीरा, मिटे ज्ञान बिन सह अंधेरा। सुनो उपदेश हृदय बसाव हो, मन इच्छे नानक फल पाव हो। हालत पलत दोए लेहो सवार, राम नाम अंतर उरतार। पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसे तिस साच परिखिया। मन तन नाम जप हो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पहु जाए। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निबह खेप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माहे, नानक बहुर नया वह जाहे। तिस्ते दूर कहा को जाए, उबरे रखन हार त्याय। निरपौ जपै सगल पौ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन कौ कोई न पहुँचन हार। सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत सृष्ट। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन बसै सुहोत निहाल, ताके निकट नयावत काल। अमर भए अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। श्लोक ज्ञानंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश।
हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन परदास सष्टपदी संत संगंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक सकट माही अनिक रंग नाना दृष्टाही नव निध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तैनाद कह न जाई चर्ज विस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाई नानक तिस जन सो जी पाई सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रह भगवंत चरण वाहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंतन पर्वत है बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माही चार कुंट दै दिसे समाही तिस्ते पिन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमरत मह देख सस्यर सूर नखेत्र मैं एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल न कबू डोल सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाई है गुण अमोल सर्व ज्योत मैं जा की ज्योत तार रहो स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद परम का नास नानक तिन मैं इहो विसास संत जना का पेखण सब ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म संत जना सुनह शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी यह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो हुए सोई सुख माने करन करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत जिस भावै ता करे विस्तार तिस भावै ता करे विस्तार तिस भावै ता एक अंकार अनिक कला लखी नह जाए जिस भावै तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कही है दूर आपे आपा भरपूर अंतर गज से आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व भूता वरतारा सर्व नैना पेखन हारा सगल समग्री जा का तना आपन जस आप ही सुना आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सब कह मद अलिप तू रह जो कुछ कहना सो आपे कह आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता लय समाए स्ते हुए सुना ही बुरा ओरे कहो किने कछ करा आप भला कर तू तत्निकी आपे जाने अपने जी की आप साच तारी सब साच ओत पोता अपन संगराच ताकि गत मित कही न जाए दूसर हुए तन सोजी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान जो जाने ते सदा सुख हुए आप मिलाए ले प्रभ सोए ओह तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुख जिस हृदय भगवंत धन धन धन जने आया जिस प्रसाद सब जगत राया जन आवन का यह सुआउ जन कै संचित आवे नाउ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन काओ सदा नमस्कार श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाउ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित्या गोतरंग संत जना की तूर मन मांग आप छोड़ बेनती करहु सास सुगन सागर तरहु हार तन के भर लिहो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग ने गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल
सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाले रतन सुनत कमावत होत उदार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन अनद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महांत के माथे नानक सुधरे तिन कै साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भये सबरेन अमृत नाम साथ सुंग लैन सुप्रसन्न भये गुरुदेव पूर्ण होए सेव की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निभही खेप हमारी प्रभ की उस्तद करहु संत मीत सावधानी का गरचीत सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सुहूत निदान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थानु बहुर न हो वयावन जानु हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद्ध नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल तेवदा सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी दृष्टिता हे फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम वचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग मैता की गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमृत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध सासंग मिटे संत कृपा ते जम ते छुट्टे जाकै मस्त कर्म प्रपाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुने लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रवचीत जन्म मरण ता का दुख निवारै दुर्लभ दे तत्काल उधारै

निर्मलता के कर्म सब ते उच्चता की शोभा बनी नानके गुण नाम सुखमनी सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमनी सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपां लख होहे तां इक न चलै नाल केव सचियारा होइए केव कूड़ै तुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेखो दुख सुख पाईऐ है इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाईऐ है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कहे ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वडियाईया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तानखे गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी ना आवै तोट काथ काथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे प्रवाह साचा साहिब साच नाए पाखिया भाउ अपार आख है मंगा है देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखियै जित दिसै दरबार मोहौ के बोलन बोलियै जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाउ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक एवै जानियै सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावियै गुणी निधान गावियै सुनियै मन रखियै भाउ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस पावा विण पाणे के नाहे करी जेती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसोणी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए चंगा ना रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर न आवई ता वात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोए न सुजई जे तिस गुण कोए करे सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै धरत धवल आकाश सुनै दीपलो पाताल सुनै पोहे न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नाश सुना है ईसर बर्मा इंद सुना है मुख साला हनुमंद सुना है जोग जुगत तन भेद सुना है शास्त्र सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश सुना है सात संतोख ज्ञान सुना है अड़सठ का इशनान सुना है पढ़ पढ़ पावै मान सुना है लागै सहज ध्यान
नानक भगता सदा विगास, सुना है दुख पाप का नाश, सुना है सारा गुणा के गाह, सुना है सेख पीर पात साह, सुना है अंधे पावे राह, सुना है हाथ होवे असगाह। नानक भगता सदा विगास, सुना है दुख पाप का नाश, मन्ने की गात कही न जाए, जे को कह पिछय पछुताए, कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मान कोए, मन्ने सुरत होवे मान बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोहे चोटा ना खाए, मन्ने जम कै साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मान कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत सिंह परगट जाए, मन्ने माग ना चले पंथ, मन्ने धर्म से ती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मान कोए, मन्ने पावह मोख द्वार, मन्ने परवार साधार, मन्ने तरह तारी गुर सिख, मन्ने नानक पवै ना भेखो, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मान कोए, पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगह मान, पंचे सोहै दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान, जे को कह करे विचार, करते कह करने नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझै होवे सचियार, तबलै ऊपर केता पार, धरती होर परै होर होर, तिस ते पार तलै कवण जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए, केता तान सवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मुह पख सार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूरख अंधकोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गालवाड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फेराहे, असंख मलेश मल पाख खाहे, असंख निंदक सिर कर है पार, नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाम असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर पार होए, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुणगा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ, विण नावै नाही को थाओ, कुदरत कवण कहा विचार, वारे न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, धरिए हाथ पैर तन देह, पानी धोतै उतर सोखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लइए ओ धोए, भरिए मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग,
पुनी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवह जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिलका मान सुनया मनया मन कीता पाओ अंतर गत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आथ बाणी ब्रह्माओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सो वेला वखत कवन कवन थेत कवन वार कवन से रुति माह कवन जित होआ आकार वेल न पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण वखत न पायो का दिया जे लिखन लेख कुरान थेत वार न जोगी जाने रुत माह न कोई जा करता सरठी कौ साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सालाही क्यों वरने केव जाना नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाणा वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवै नानक जे को आपौ जाणै अगै गया ना सोहै पातालां पाताल लख आगासां आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा असलो एक तात लेखा होए तां लिखी है लेखै होए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप सालाही सालाहे एति सुरत न पाईया नदियां अतै वाह पवै समुंद न जानिए समुंद साह सुलतान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मन होना भी सरा है अंत न सहफती कहन न अंत अंत न करण देण न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कही है बहुता होए वड़ा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ ए वड़ ऊंचा होवै कोए तेस ऊंचे कौ जाने सोए जे वड़ आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड़ा दाता तिल ना तमाए केते मंगै जोद अपार केते आगणत नहीं विचार केते खप तुटै वेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूरख खाही खाहे केते दुख भूख सद मार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी पाणै होए होर आख ना सकै कोए जे को खाए को आखण पाए ओह जाने जेतिया मोहे खाए आपे जाने आपे दे आखै से पे केई के जिसनो बख्शे सिफत सलाह नानक पात साही पात साहो अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवै अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बखसीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪਾਇ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚੇਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇਹੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਿਹ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਣ ਸਾਹੁ ਸਹਾਣ ਗਣੀ ਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਾਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਵੈ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਤਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਟਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਛੇਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋ ਏਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਪਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਖਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਤਿਰਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਤਿਰਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਮੇ ਨਮਸਤਸ ਧਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ ਅਦੇਸੰ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਯਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਅਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਬਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਨੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਹੁਨੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦਯਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭਰਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਰਨੇ ਨਮਸਤੰ ਜਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰ ਕਰਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ ਨਮੋ ਸਤ ਅਬੰਦੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਯਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਭੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਪੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਅਪੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਪੀਤ ਹੈ ਤਿਰਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤਿਰਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ ਅਨਿਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਬਰਨ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਪਰਨ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਪੰਜ ਹੈ ਅਚੂਜ ਹੈ ਅਝਾਂਜ ਹੈ ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਤੰਦ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅਲਾ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸਰੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗਮ ਹੈ ਅਜਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਪਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਪੀਤ ਹੈ ਅਬਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਬਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਪੇਖੀ ਅਪੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਹੁਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਰਸੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਸਮਸਤੀ ਬੈਭੂਤੇ ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾ ਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਜਵੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੁਗਵੇ ਸਵਰੰ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਜਵੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਬਿਰਦੇ ਨਮੋ ਸਹਸਤ੍ਰ ਬਾਣੇ ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰ ਮਾਣੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਅਪੇਖੀ ਅਭਰਮੀ ਅਭੋਗੀ ਅਭੁਗਤੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੁਗਵੇ ਸਵਰੰ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਗੁਰੂਰ ਕਰਮੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਅਪ੍ਰੇਤ ਦੇਵੇ ਸੁਧਰਮੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਾਹ ਸਾਹੰ ਨਮੋ ਭੂਪ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਦਾਨ ਦਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਇਸ਼ਨਾਨੰ
नमो मंत्र मंत्रं नमो यंत्र यंत्रं नमो एष्ट एष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा विरद करता अदो उर्द अर्धं अघं ओग हरता परम परम परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तास्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्तीन धाने नमस्तवंग निरनाथे नमस्तवंग प्रमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वगयानं नमो परमपानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिदं निवासी चरपट शांतो अप्रसाद अमृत कर्मे अमृत तर्मे अखल योगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शांत त्वा प्रसाद आदि रूप अनाद मूरत अजोन पुरुष अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपुन काल यत्र तत्र विराज हि अवतूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग नरेख आद पुरुख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना पेस जाकर रूप रेख न राग यत्र तत्र दिशा विसा होए फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेखत तामहु नह जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल न अंत को फिर एक देव पेव न जानहि जेह वेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जानहि केहे जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिरै चतुर चक मानहि पुर तीन लोक चौदह के बिखै जग जापहि जेह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जेह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरुष अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयंभव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरुष आदेश धर्म ताम सो परम रहत अभूत अलख अपेश अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरुष अवतूत गर्भ गंजन सर भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरुष अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्राप्त पार सर्वगंता सर्वहंता सर्व तेन पेख सर्व शास्त्र न जानहि जेह रूप रंग अर रेख पारम वेद पुराण जा कहने तपाकत नेत कोट सिमरत पुराण शास्त्र ना आवहि वह चित मधुभार छंद त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस दिन अनाश अजान बाहो एक सदा आजान बाहु शाहान शाहो राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आपा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम नृपय निकाम अत दूत पर चंड मित गत अखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ्य अंडंड वाढ्य चाची छंद त्व प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र भरती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मान्य चत्र चक्र दान्य चाचरी छंद
न सत्रय न मित्रय न परमंग न पित्रय न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रय न मित्रय परे हैं पवित्रय प्रथिसय आदिशय अदृशय अकृशय भगवती शांतो प्रसाद कथते के आशिज देसै के अभिज भिसै के अगंज करमै के अभंज भरमै के अभिज लोकै के अदित सोकै के अवतूत बरनै के बिभूत करनै के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण है के सर्वा अवर्ण है के जगं गर्ती है के शत्रंग क्षत्री है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपाओ अनुपय के आद अदेव है के आपोपेव है के चित्रंग बेहीने के एक अधीने के रोजी रजा कह रही मेरे हक है के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के अफुल गुना है के शाहान शाह है के कारण कुनेंद है के रोजी दहन दहें के राजक रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र साजा है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सोख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलीमे के परमं फहीमे के अकल अलामे के साहिब कलामे के हुसन अलवजू है तमाम अल रजू है हमें सुल सलामे सलीकत मुदामे गनीमल सिकास्त है ग्रीबुल परसत है बिलंदल मकान है जमीन अल जमान है तमीज उल तमाम रजूअल ने दहन है हरीफल अजीम है रजायक यकीन है अनेक उल तुरंग है अपेद है अपांग है अजीज उल निवाज है गनीमल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त उल सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओम आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभृगं त्रिभादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्व भागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप है अचिज है अछूत है किनर्कं प्रणाश है पृथ्वीवल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अपांग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है नाश है प्रकाश है निचंत है सुनंत है अलेख है अदेख है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट शंत अप्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं प्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल शांत प्रसाद नमो नरक नासे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बेबूते परमात्म परमाते सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बेबूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात नृसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांतो अप्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है हमें सुल सलाम है समस्त उल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसन चिराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी दहिंद है के राजक रहिंद है क्रीमल कमाल है के हुसन जमाल है गनीमल खिराज है ग्रीबुल निवाज है हरिफुल शिकन है हरासुल फिकन है कलंक प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब के राह है के नरकं प्रणास है बहस्तुल निवास है के सरबुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अभेख है जमीनल जमा है अमीकुल इमा है क्रीमुल कमाल है के जोरत जमाल है
कि अचलंग प्रकाश है, कि अमितो सुभाष है, कि अजब स्वरूप है, कि अमितो विभूत है, कि अमितो पसा है, कि आत्म प्रभा है, कि अचलंग अनंग है, कि अमितो अभंग है। मधुभार शांतो प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अरभर आगंजो हर नर प्रपंजो अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनुभव अनासो मुन मन प्रकाशो गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम आनशे जो अंग आसन अपंग उपमा अपारो गत मित उदार जल थल अमंड देश विश्व अपंड जल थल महंत देश विश बेअंत अनुभव अनासु त्रित तर तुरासु आजान बाहु एक सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद खालखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनशिज गात आजिज न बात अनचंज गात अनरंज बात अनठट भंडार अनठट अपार आडीट धर्म आतचीट कर्म अनब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद तुआ प्रसाद करुणालय है अरकालय है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वोभारण है त्रैत के तरण है जाग के करण है मन मान्य है जग जान है सर्वंभर है सर्वंकर है सर्वपाश है सर्वनाश है करुणाकर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणी त्रित है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है निर्णायक है खलकायक है विश्वम्ब्र है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है भाव भंजन है अरिगंजन है रे प्रतापन है जाप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सात रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योत ज्योदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री छंद अजय अलय अपय अभय अभू अजु आनास आकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अटा अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी नारागे नारंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे इंद्रकामं विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुकर्मं विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी ग्री मलकुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियं करियं क्रीमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेबूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेबूते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह दसवीं तव प्रसाद सोइए श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरेओ कार जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हुंते एक रति बेन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पाउन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद न्यावत सीस न जात बिचारे एते भये तो कहां भये भूपत अंत को न गही पाए पधारे।
जीत फिर सब देश दिसान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गनै नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताम सुधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेव कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सब सो विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है सुध सिपाहा दुरंत दुबाहा सुसाज सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तुर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चारे सार की तार पछैया तोरत दे समलंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जा चुक अनेक सो एक देवैया दानव देव फनेंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जायत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान अनेक सुअम्र साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फसे जाम फास परेंगे जे नर श्रीपत के प्रस हैं पाग ते नर फिर न देह धरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बाक ध्यान लगायो नाहत फिरियो लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठो कै ऐसे ही ऐसे सो बैसो बेतायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज तरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर आवाची दिशा में काहू पशा कौ शीस निवायो को बुतान कौ पूजत है पाश को मृतान कौ पूजन तहायो कूर क्रिया उर्जयो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो कूर क्रिया उर्जयो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूरन होए चेत की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रात पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दय मुहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै कर तारा मोर अच्छा निज कर दय करियाय सब बैरन को आज संगरियाय पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दय मुझे उबरिया है मरण काल का त्रास निवरिया है पूजो सदा हमारे पच्छा श्रीअस्त जो करे हव रक्षा राख ले हो मोहे रखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सेव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जक्षण उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सोख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो घट घट की अंतर की जानत भले बुरे की पीर पशानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला
संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उध करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा। जब अकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्बकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभव। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ काश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेवो। आप अपने बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केहे बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत पूज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट पायो संकरे कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दोष्ट जीते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझ तब सरणी परे, दिन के दुष्ट दुखित हवा है मरे। पुरख जवन पाग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट न आय है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तातो काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताके ताप तनक मह हरे हो। रिद सिद कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संपारा, काल फास देता है उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग के तमै शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्व ठाउर मोह सहाई, दुष्ट दुख ते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरण सो बराता। केले बेखो सकल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को शाय करता। श्री असतुज जब पये दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन बांशत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई। अड़िल सुने गुंग जो जाहे, सुरस न पावई। सुने मूड चित लाए, चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नरके रहै। हो जो जाकी एक बार, चौपाई को कहा चौपाई। संबत सतरह सहस पण जय, अर्ध सहस फोन दीन कहि जय। भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा, तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा। सोइया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो। श्री अस पान कृपा तुमरी का।

कपंड तेह कमत हो जत संजय करें प्यार धर्मी धर्म कर गवावे मंगे मोक द्वार जपी सदावे जुगत न जाने छट बहे कारोबार सबको बुरा पे होवे घट न कोई आखे पत प्राण पिछे पाइए ता नानक तो

हर के दास सुहेले पाई, जन्म जन्म के किल बिक दुख काटे, आपे मेल मिलाई रहाओ। एहो कुटुंब सब जी के बंधन पाई, परम भुला संसारा, बिन गुर बंधन टूटे नाही, गुरमुख मोख द्वारा, कर्म कर है।

होए न किस ही केरा। गुरमुख महल पायन गुण गावन, निज घर हुए बसेरा। एथै बूजै सो आप पछाणै, हर प्रभ है तिस केरा। सतगुरु सदा दयाल है भाई, विण भागा क्या पाई है।

हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवै सुख न पाए नानक सा धन मिलै मिलाई जिसन

धन छोड़ परदेस सिधाए, दूजै किनै सुख न पाया, पिरा जियो बिखिया लोभ लुभाए, बिखिया लोभ लुभाए भरम भुलाए, ओ क्यों कर सुख पाए, चाकरी विडाणी करी दुखाली, आप वेच धर्म गवाए।

सब तिखा बुझाई। मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया, सब मीत बंदप हरख उपजया दूत थाओ गवाया। अनहत वाजे वजह घर मह फिर संग सेज बिछाई, बिनवंत नानक सहज रह हर मिलिया कंत सुखदाई। गौड़ी महल्ला पंजवां।

तुझ त्या वही कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासी मिल दर्शन सुख सारा मोहन तेरे वचन अनूप।

जो एक मन त्यावहे मन बचन कर्म जे तुद आराधहे से सबे फल पावहे पल मल मूत मूड जे मुग्ध होते से दे

बेअंत गुण तेरे कथे न जाही, सतगुर पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारे। गौड़ी महला पंजवां श्लोक। पतत

भगत बचल पुरख पूरन मन है चिंदया पाईऐ तम अंध कूप ते उधारै नाम मन वसाईऐ सोर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अनिक भगत।

खोज लहू हर संत जना संग स्मृत पुरख मिलाए, नानक तिन मिलिया सुर जिन द सुख दाता सेवड़ भागी माए सखी।

सत बुद्ध मूरत गुरदेव पारस परस परा गुरदेव तीरथ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतित पवित करा गुरदेव आद जुगाद जुग जुग गुरदेव मंत हर जप उदरा गुरदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लग तरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस करा। श्लोक आप पह की

सच संपै हर रास, नानक सच सुच पाई है ते संतन के पास। पवड़ी ससा सत सत सत सो, सत पुरख ते भिन्न न को, सो सरन परै जेह पायं, सिमर सिमर गुण गाए सुनायं। संशय भरम नहीं कछ व्यापत,

ते गुरमुख निर्मल बुद्ध वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु रूप सासंग जी आप तनता योग हो गुरु चरणा विच बैठ के करां विच बैठ के नितां प्रति अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ सरवण करदे हो। सतगुरु जी सभना दी हाजरी दर प्रवान कर लैण, दरों करो नाम दान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजन जी। अगाध बोध बाणी पढ़दियां होईयां भुल्लां दी खिमा, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: लंच।
1: तो हूँ जो अगला जत्था आप जिनों कृष्ण चरण कवाएगा जी साढ़े गुरद्वारा साहब से हजूरी राजी श्री दरबार साहब जी हजूरी राजी भाई साहब भाई इंद्रजीत सिंह जी खालसा बेनती करा भाई साहब नीते हाँ इन्हों जो राग जिन्हें जिन्होंने कीर्तन करना है राग बिलावल ते रामकली सो बेनती है भाई साहब शुरू करेंगे जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।

ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइया। ब्रह्म ज्ञानी को खोले महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की